एग्रिकल्चरल साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी किकास किर्तिपुर काठमाडौँ फोन 01-590-61-89 मोबाइल 97-072-540-89

यही काफी है, हर एक मौसम भी अपना लगे। तेरे इश्क में ये दिल कहे, अब और कुछ भी ना चाहिए।

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-2670, मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-2470 मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।
2: चोइस एफएम 90.4 मेगाहर्ज।